@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 47। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Toch! कुछ नए कुछ पुराने गीत, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका यागनी का ये सॉन्ग है।

बदल न जाना मौसम की तरह, मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं। मूवी के नाम है राजा निकंदीन 105 नीकत का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और जरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपके जॉनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जे तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा शरबानू राजेंद्र कुमार का ये जो है फिल्म है और जिसमें मूवी का नाम है यहाँ पर बताई गई है इस ओल्ड इज गोल्ड अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत आओ सुना जाए।

पर्सन दो राजेंद्र कुमार शेरबानु अमन सॉन्ग्स का ये गीत है। एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं। जिस नई खंत क्रिया यार नई खंत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी इसमें क्या करते भैया किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराही नार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

बावनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो वाहन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 6320 तक सेफ नफेटा फाहुन हिंदुस्तानी रात।

और गुजरा हुआ जमाना तो कभी तो लौट के नहीं आता है। और नाइटिंगेल लता का ये ओरिजिनल सॉन्ग थी दोस्तों। और इसके बाद आज हम आप लोग को पुराने गीतों की ओर लेकर फिर चलते हैं। और ये गीत जो है बहुत पुराना गीत है, वसंत देसाई का। और सुना जाए ये गीत, जब ये फिल्म चले थे दोस्तों तो मेरा अभी कुछ नाम हो और निशान नहीं।

टीम टीम टीम तारों के गीत चले। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला जोन की ओर। ये भी एक मस्त भरी पुरानी गीत है और ये गीत आप लोग को 1955 का ये जोन है। मोफी के नाम है मुनीम जी जिसमें देवानंद ने काम किया है प्राण के साथ में। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं और किशोर कुमार का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की ओर और आशा भोसले की ओर एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है और द्वैत सूरज। दोस्तों हम चलते हैं, आओ मिल के सुना जाए। मूवी के नाम है सूरज नहीं खती होंदत, मूवी का नाम है सूरज नहीं खती होंदत, एंड सेशन सेस्टक का ये सॉन्ग है।

दिल के भवरे करे पुकार, अभी आपको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन पहले लेकर चलते हैं एक बार आता है दिन ऐसा।

और रोज नहीं। अभी आप लोग को हमने सुनाई थी एक गीत, दिल का भंवरे कहीं पुकारा, अनंत देवानंद का ये सॉन्ग है। इस गीत को लेकर हम और चलते हैं।

दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं एक गीत है दोस्तों देखती होंदत एहसास फेर तक का मौफी का नाम है अनमोल घड़ी अनमोल घड़ी मौफी का नाम है महमूद खान ने इस फिल्म में डायरेक्टर थे दोस्तों toen was ik nog niet eens geboren ik weet het niet ik heb deze film ook niet gezien maar हमारे दोस्तों जो है यहाँ पे रेडियो पर वो सब इस फिल्म देख चुका है और हमसे कहा कि जॉनी जरूर चलाना तो हम जरूर चलाएंगे आओ मिलकर सुना जाए ये कालम नहीं है दोस्तों ये कुछ और है।

हम उड़ जाएंगे। मूवी का नाम है अनमोल घड़ी दोस्तों, और इस फिल्म में इस गीत को गाए हैं शमशान बेगम और सोरेबा अम्बाली वाली। तो ये सब नाम तो हमने अपने जिंदगी में अभी नहीं सुना है, लेकिन इस मूवी में काम किया है सुरेंद्र नूर जहां सुरैया, सहू राजा अनवरी, मुरत एंड लीला मिश्रा का ये सॉन्ग है दोस्तों। हम फिर एक पुराने गीत की ओर जाते हैं। फिल्म के नाम है जाओ नेगेटिव 125 का ये सॉन्ग है दोस्तों, और इस गीत आओ सुना जाए। दिस इज हेमंत दादा।

दोस्तों, मूवी का नाम है जाल। 1952 का ये सॉन्ग है और वो बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है। तो हम आपको उस दौर, उस यादों की ओर लेकर चलते हैं जिस मूवी के नाम है दीदार। 1951 का ये सॉन्ग है और अगर बचपन में आप किसी से मोहब्बत किया है तो आप इस गीत से उसको या उसकी याद कर सकते हैं।

और बचपन की ये दिनी आपको कभी भुलाना नहीं चाहिए दोस्तों। कभी कभी लोग कहते हैं भूल गया है, लेकिन बचपन की मोहब्बत की जो संबंध है वो तुम्हारे साथ चलते हैं। अगला गीत की ओर हम चलते हैं। छोड़ दो हमारी आंचल, क्योंकि जब हमारे आंचल पकड़ेगी तो दुनिया बोलेगा कि सरक के गिर न जाए या कुछ और न दिखा जाए।

करेगा दोस्तों। और किशोर दादा का एक और सॉन्ग हम आप लोग को यहाँ पे सुताएंगे, नाइटिंगेल लता जी, और फिल्म के नाम है निमी, और ये लता नहीं दोस्तों, यानी ये रफी नहीं है, लेकिन नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। उरन खटोला मूवी का नाम है।

जिक्र होता है जब कयामत का, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी माई लव से आप सुनेंगे द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे जिक्र होता है जब कयामत का, अदवाइत मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी माय लव से हमने पेश किए हैं रुक जा ऐ हवा, लता जी आपको सुनाने वाले हैं ये सुंदर सा गीत, आप सभी के वास्ते हम पेश करते हैं। फ्रॉम द मूवी शागिर्द से आप सुनेंगे

अभी आप सुन रहे थे रुक जा ए हवा, हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल ही साफ नहीं तो चमकते चेहरे का कोई फायदा नहीं। फ्रॉम द मूवी आरसू से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और गीत का बोल है ए नर्क इसे मस्ताना।

आप सुन रहे थे एनर्जी से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और लता जी आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, जिंदगी सब्र करना सिखाती है, जिंदगी सब्र करना सिखाती है और सब्र जीना सिखाता है।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, सरा बोझ तो ख्वाहिशों का है। मैंने देखा तूने देखा फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले।

अभी आप सुन रहे थे मैंने देखा तूने देखा, लता जी के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हमने पेश किए हैं। कोशिश करना कि जिंदगी में वो शख्स आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले, जो आपको रोज आईने में दिखाई देता है। कान में झुमका, चाल में झुमका, फ्रॉम द मूवी सावन भादो से हम पेश करते हैं। मोहम्मद रफी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे कान में झुमका, जाल में ठुमका, लगे पशासी झटके। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं सर आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमां से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे झुक गया आसमां से, कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ, बोल सितमगर मान भी जाओ। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। हाँ, मैंने भी प्यार किया मुकेश जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं। लोग हमारी कदर उस वक्त नहीं करते जब हम अकेले हो, बल्कि उस वक्त करते हैं जब वो अकेले हो।

फ्रॉम द मूवी बूंद जो बन गए मोती, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफी जी और सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम और आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और मंजिल इंसान के हौसले आजमाती हैं, मंजिल इंसान की हौसले आजमाती हैं, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आप यहाँ आए किस लिए, किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं साथ में आशा जी के साथ।

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओ

0: अपना बना लो, हाथ जरा थाम लो, बार बार पूछो ना, दिल से भी काम लो।
1: काम तो बताओ।
0: काम सीधा साधा है,
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।

0: बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: अभी आप सुन रहे थे आप यहाँ आए किस लिए, आशा जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। सुंजा आ ठंडी हवा, थमजा ए काली घटा आप सुनेंगे। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ लोग खुद टूट जाते हैं दूसरों की खुशी के लिए।

किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले थे सुंजा आ ठंडी हवा फ्रॉम द मूवी हाथी मेरे साथी से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम में आ रहे हैं मोहम्मद रफी जी और वो आपको सुनाने वाले हैं रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं।

रफी जी आपको सुनाने वाले थे रंग और नूर की बारात, किसे पेश करूं। नादान है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जीवन भर ढूंढा जिसको।

का नाम है नादान और इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला। द मायती मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी ढूंढ से हम पेश करते हैं उलझन सुलझना।

आप सुन रहे थे उलझन सुलझे ना, रास्ता मुझे ना, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां, फ्रॉम द मूवी ढूंढ से हमने पेश किए हैं आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। सबर रखे ना धूप रहती है ना छाव रहती है, सबर रखे ना धूप रहती है ना छाव रहती है देर तक। पगला कहीं का है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे।

पगला कहीं का है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किया है मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में तुम मुझे यू भूला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग भी तुम गुनगुनाओगे। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं, जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उनको समझना आसान नहीं होता। मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, काश के मेरा कोई सहारा होता।

दमाईती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे काश के मेरा कोई सहारा होता, आज मैं काहे को आवारा होता। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, लेकिन मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं। काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। लता जी और मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए।

अभी आप सुन रहे थे तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी जाने अनजाने। जाइए आप कहाँ जाएगी ये नजर लौट के फिर आएगी। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी के वास्ते कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, खास है वो लोग जो वक्त आने पे वक्त दिया करते हैं। मेरी सनम है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जाइए आप कहाँ जाएगी ये नजर लौट के फिर आएगी। और ये खास गीत हम पेश करते हैं शुली के वास्ते।

आशा भोसले की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मेरे सनम से हमने पेश किए हैं। जाइए आप कहाँ जाएगी ये नजर लौट के फिर आएगी, और ये गीत हमने पेश किए थे शर्ली जी के वास्ते। रिश्ते जरूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देती, रिश्ते जरूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देती, और जज्बात के हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुमन कल्याणपुर के साथ, तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, और ये गीत हम पेश करते हैं धीरज की तरफ से आरती जी के वास्ते बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ।

मोहम्मद रफ़ी जी भी आपको सुनाने वाले थे। जब मोहब्बत जवान होती है हर अदा एक जवान होती है, और ये गीत हमने पेश किए हैं ख़ास करके धीरज की तरफ से आरती जी के वास्ते बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ। खामोश रहो सिर्फ खुदा ही है, खामोश रहो सिर्फ खुदा ही है जो तुम्हारे दिल का बोझ उतार देगा। बाहोशो हवास में दीवाना, मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

मोहम्मद रफ़ी जी अभी आपको सुनाने वाले थे बाहोशो हवाश में दीवाना। इस हिस्से में एक आखिरी गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। मोहम्मद रफ़ी जी सुमन कल्याणपुर जी मिलकर सुनाते हैं कह दो जहाँ से कह दो इश्क पर जोर नहीं।

अभी आप सुन रहे थे जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, ताजमहल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं, गीत का बोल है अभी ना जा मेरे साथ ही, दिल पुकारे आ रे आ रे आ रे।

अभी आप सुन रहे थे अभी ना जा मेरे साथी दिल पुकारे आ रे आ रे आ रे, पांव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ताजमहल।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ताजमहल से आप सुन रहे थे पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। जिंदगी में हमेशा उस इंसान की कदर करो, जिंदगी में हमेशा उस इंसान की कदर करो जो अच्छे वक्त में आपकी खुशी में शामिल रहे और बुरे वक्त में आपका साथ दे। सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज़ फ्रॉम द मूवी अमन से हम पेश करते हैं और आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी।

0: to enjoy ever.
1: अभी आप सुन रहे थे सुराहेदार गर्दन कोयल सी है आवाज, तेरी हर एक बात पे मुझको है बड़ा नास। फ्रॉम द मूवी अमन से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। पुजारिन है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा, सागर से गहरा प्यार मेरा।

नमाई दी मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पुजारिन से हमने पेश किए हैं मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा सागर से गहरा प्यार मेरा। गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे यूं मुसाफिरों की तरह, गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे यूं मुसाफिरों की तरह, यादें वही खड़ी रह जाती हैं रुके रस्तों की तरह। फ्रॉम द मूवी अपने हुए पर आए इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैंने बुलाया और तुम आए। लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

कैमरे पर आए हैं फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मैंने बुलाया और तुम आए। लता जी की आवाज़ में अभी आपने सुने हैं और म्यूजिक दिए हैं शंकर जय किशन जी। दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है, फ्रॉम द मूवी जिंदगी और मौत से हम पेश करते हैं। महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है, फ्रॉम द मूवी जिंदगी और मौत से हमने पेश किए हैं, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे। एक गलत बात और एक अधूरी बात, एक गलत बात और एक अधूरी बात न जाने कितने ही रिश्ते तोड़ देती हैं। जिंदगी है क्या, सुन मेरी जा, प्यार भरा दिल मीठी जुबां, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी माया से आप सुनेंगे और म्यूजिक दिए है सलील चौधरी ने।

फ्रॉम द मूवी माया से हमने पेश किए है जिंदगी है क्या सुन मेरी जा प्यार भरा दिल मीठी जुबा। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। वक्त है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन ये गीत पेश करने से पहले एक बात बोलूं, भरोसा उस पर करो तो तुम्हारी तीन बातें पहचान सके, भरोसा उस पर करो तो तुम्हारी तीन बातों पहचान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह।

अभी आप सुन रहे थे हम जिप्सी मटके आपकी बाहों में आ गए, फ्रॉम द मूवी वक्त से हमने पेश किए हैं, आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी में एक चीज तो कभी डिलीट नहीं होती, जिंदगी में एक चीज तो कभी डिलीट नहीं होती और वो है किसी की यादें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी आज और कल।

0: अभी आप सुन रहे थे ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे।
1: मित्रों बोल तो कुछ ऐसे बोल

जय जय राम। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। एक बार फिर, हर बार फिर आपको स्वागत किया जाता है बहुत प्यार के साथ। यहाँ से जिस भजन प्रोग्राम में हम गोटा लगाते हैं और हर बार लगाते ही रहेंगे, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए, ताकि हमारा दिन जो है वो ऊर्जावान रहे, पॉजिटिव रहे। दातु मैटन ब्रेड खलाख दौर हत लेफ माखान एन ओक उतख माख बखेने। We hebben net Hanuman Chalisa kunnen luisteren en dan heb ik dit hierbij ook voor jullie Shiu Chalisa.

जी मेरे सुनने वालों, यहाँ से हनुमान चालीसा के बाद शिव चालीसा हमने मिलकर और श्रवण की है, तो उसके बाद आपके लिए गणेश मंत्र जी, और वो भी 108 बार। आप सिर्फ सुनने से आपका दिन जो भी है वो बढ़िया से शुरू हो जाएगा और आपको ऊर्जा मिल जाएगा। ऊर्जा माने कि इनर्जी।

108 बार यहाँ से हमने श्रवण कर ली है श्री गणेश मंत्र। हाँ जी, पूरा 108 बार। उगता हुआ सूरज मेरे प्यारे सुनने वालों, भक्त प्राणियों, मेरे उगता हुआ सूरज हम सभी के लिए बहुत खुश रहे, खुशहाली लाए है, फूलों की खुशबू। ये जो दिन है ये खुशबू हम सभी को मिले। गुड मॉर्निंग के साथ सुबह तुम्हारी ज़िंदगी में, हम सबके ज़िंदगी में रोशनी आए। और इस बार आपके लिए है कुबेर मंत्र। हाँ, कुबेर मंत्र, कुबेर जी जो खजानती है, पैनिंग मेस्टर है हम सभी के लिए, जिसके खातिर हम सुबह उठते हैं और हाँ अपने नौकरी पे जाते हैं पैसा कमाने के लिए। और पैसा का खजाना जो है वो कुबेर जी है, तो उनको भी हम याद कर लेते हैं।

अति सुंदर जो हम यहाँ से कुबेर जी को भी अपने जीवन में शामिल कर दिया गया है, और कुबेर जी तंदुरुस्ती के साथ हमें भी कुबेर जी चाहिए खजांती। ऐश्वर्य वैभव हमारे जीवन में भी एक अंश है। आपके लिए इस बार शिव जी की स्तुति।

सुबह की धूप यादों का एहसास दिलाती है। जी हाँ मेरे सुनने वालों, की सुबह की धूप यादों की एहसास दिलाती है। हर खुशबू एक नया जादू चलाती है।

हाँ, गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया अवश्य अवश्य। सुबह सुबह सुबह सुबह सूरज का साथ हो मेरे दोस्त। हाँ, सूर्य उगता है कितना अच्छा लगता है ना, सुबह मिलता है देखने के लिए तो कितना खुश हो जाता है दिल। हाँ, कहते हैं कि सुबह सुबह सूरज का साथ हो, गुनगुनाते पंछी की आवाज हो, क्या खूब है। और हाथ में कॉफी कॉफी चाय और यादों में कोई खास हो, जैसे आप मेरे दोस्तों। हाँ मेरे भक्त प्राणियों, उस सुबह की पहली याद तो आप है, इसलिए यहाँ से ये स्पेशल प्रोग्राम भक्ति में, भक्ति भजन जो है इसमें हम गोटा लगाते हैं ऊर्जा पाने के लिए, दिन की शुरुआत करने के लिए, सिर्फ आपके लिए।

देव भगवान अवश्य करते हैं हम सबके कल्याण। कितना अच्छा बात है। उठकर तो देखिए जा मेरे प्रिय भक्तजनों के, उठकर देखिए सुबह का नज़ारा। ओहो, हवा है, ठंडी मौसम, वो प्यारी प्यारी मौसम। सो गया चांद, छुप गया हर एक तारा। स्वीकार कीजिए आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से गुड मॉर्निंग। सुप्रभात आप सभी को।

दोस्तों, हे सूर्य देवाय, हे सूर्य देव, दर्शन तेरा दर्शन। सूर्य देव के दर्शन करने से दिन कितने अच्छे होते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुशियाँ आ जाता है। सुबह का उजाला लेकर आया है आपके जीवन में, हम सब के जीवन में खुशियाँ और प्यार। कि आपके होंठों पर आप जागते हो तो कितना खुशियाँ आ जाता है, होठों पर हंसी, आंखों में खुशी। और ये दिन लेकर आया है हम सब के लिए। हाँ, हम सब के लिए खुशी। जो खुशी लेकर आए हैं, इस खुशी को और इस खुशी का कभी शाम ना होए। ये खुशी जो है हरदम हर वक्त जवान।

जी हाँ, सूर्य देव का नाम भी आदित्य है, ऐसे अन्य नाम भी है हमारे सूर्य देव के। रवि भी सूर्य देव का

जीवन में अपनों के लिए कभी, जीवन में सपनों के लिए कभी अपनों से दूर मत होना। जीवन में सपनों के लिए कभी अपनों से दूर मत होना, क्योंकि अपनों के बिना जीवन में सपना का कोई मूल्य नहीं है। और एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना ज़रूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे पास है वो ही ख़ास है। वही ख़ास सिर्फ नहीं, वो सबसे अच्छा है। प्रोग्राम सुनने के लिए आपको यहाँ से मैं दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। इस वक्त के लिए स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार।

आपसे ये भी बता दे कि हर बुधवार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेगा हमारे मान्यवर श्री पंडित राजकुमार महातम जी, सुंदर सा कथा लेकर, और वो भी 9 बजे विज्ञापन के बाद। तब तक हम उनका इंतज़ार करते हैं और यहाँ से आपके लिए भी सुंदर सुंदर गीत लगा रही हूँ।

शब्द जो है ये रेगी हिंदी म्यूज़िक आपके लिए जो पेश हो रहा है मेरे प्यारे सुनने वालों, और आपसे ये बता दे इस द इर्स्ट रेडियो स्टेशन जो ऐसा ही न्यू स्टाइल गीत आपके लिए ला रहे हैं। इस द इर्स्ट एंड द बेस्ट रेडियो स्टेशन सिर्फ आपके लिए, आपके लिए नए से नए गीत आपके लिए चुनकर खोजकर और ला रहे हैं सुनाने के लिए। और ये रेगिस्तान में आप ये शब्द जो है उसे सुने और एक एक शब्द हमारे जीवन के कुछ लाइन इसमें ज़रूर आप पकड़ पाएंगे। हाँ, सोचेंगे हाँ ये तो बात सही है। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए यहाँ से चलते सुनने के लिए फिर ये रैग स्टाइल में और शब्दों में क्या हमको सुना रहे हैं।

0: जी हाँ प्यारे प्यारे सुनने वालों, जिनका इंतज़ार था वो आ गया है। हम बहुत प्यार के साथ श्री पंडित राजकुमार महातम जी को यहाँ पर आगमन कर रहे हैं। पंडित जी, आपको हार्दिक से स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: जी आप आकाश में हो।
1: हाँ जी।

ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायणो परो देवा सर्वनारायण सदाम ओम नीलं भुजिश्यामलकोमलंगं सीता समारोपित्वाम भागम पाणु महासायिक चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। हरि ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः स्वासुत्राय च मोक्षुक्षरूप ईश्वर को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। कल्याण करने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार। और अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के चैनल जहाँ तक हमारा आज पहुँचे आप सभी को जाकर यथायोग मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीताराम पहुँचे। खास राजू फान को जो मालिक हैं मैं उनके भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ जो समय प्रदान किया धर प्रचार करने के लिए। हम आप अभी कितना ले रहे थे जहाँ प्रसन्नता जी ने रेडियो फान को माध्यम से कितने अच्छे ढंग से मैं आपको सेवा कर रहे थे उनको मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। आकाशवाणी कृष्ण वाले हर बुद्ध की तरह भगवान का अनुकंपा कृपा हुआ ताकि आपके बीच में कुछ ना कुछ हम धर्म संदेश आप तक पहुंचा सके। तो आकाशवाणी के सुनने वाले इस पे ध्यान करना है ना, बात हमारे ऊपर भी लागू होते हैं। चार पाई जिसे हम टूटी भाषा में खटिया, चार पाई पर, फिर से बात दोहरा, चार पाई पर पढ़ने के बाद परमात्मा का नाम जब करते करते सो जाओ। कहा गया है ना परमात्मा के नाम सदैव हमें उनको नाम सदैव में उच्चारण करना ध्यान करना है। आप भी भजन जानते हैं ना, कई बार सुन चुके कोई भजन, जिस हाल में जिस देश में रहो जिस भेष में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, जिस काम में जिस गांव में जिस धाम में रहो राधा रमन राधा रमन कहो, जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो राधा रमन कहो, जिस भोग में आकाशवाणी के सुनो इस पे ध्यान करना, जिस भोग में जिस रंग में जिस योग में रहो राधा रमन कहो आकाशवाणी के सुनने वालों। और चार पाई पर सोने के बाद मनु धीरे धीरे जाग, कहा गया है ना चार पाई पर सोने के बाद मनु धीरे धीरे जगत को भूलता है, जगत ही पूर्ण होने के बाद ही निद्र आती है, निद्र का आगमन हो उस क्षण तक परमात्मा का नाम सुमरण करो। श्री राम यानी परमात्मा के नाम बोलते बोलते निद्र आ जाए और निद्र से जागो कि तुरंत ही प्रभु के नाम का जप प्रारंभ कर दो तो निद्र भी भक्ति बन जाएगे। भक्त वो है जो प्रत्येक व्यवहार में परमात्मा का साथ रखता है। भक्त बाहर जाते समय परमात्मा को वंदना करता है और कहता है कि इस समय मुझे बाहर जाना है परंतु तुम्हारे दर्शन बिना सुमरण बिना मैं रह सकता नहीं, यानी रह सकता नहीं। मैंने सुना है कि आपके अनेक रूप धारण करने आते हैं, आप ऐसा कृपा करो कि एक स्वरूप में आप घर में विराजो और एक स्वरूप से मेरे साथ चलो, इस प्रकार मार्ग में भी
परमात्मा के साथ ही रखो। हम वहां भी जानते आकाशवाणी के स्मरण परमात्मा का अनेक रूप है ना। कई बार मैंने वो गाथा कह चुके हैं ना। एक बार तुलसीदास कहाँ पर गए, वृंदावन में तुलसीदास गए, वहां के गोपिया लोग कह रहे आप तो राम भक्त हैं, यहाँ तो कृष्ण हैं। तो वहां पर जा करके तुलसीदास अपने हृदय से प्रभु राम सके प्रभु हमें आप रूप दिखा दो, धनुष बाण हम आपके हाथ में धनुष बाण देखने चाहते प्रभु। तो आकाशवाणी कृष्ण वाले तुलसीदास के बात सुन करके कृष्ण भगवान के जो मूर्ति था वृंदावन में वही जाकर के क्या राम के रूप हो गए, यानी हाथ में धनुष बाण लेकर के खड़े हैं। वहां पर जाकर के कौन तुलसीदास वहां प्रभु राम को चरण को प्रणाम करते हैं। हम जानते हैं परमात्मा एक, लेकिन जो रूप से हम भगवान को देखते भगवान रूप हमें दिखाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं आकाशवाणी के सुना लो। भक्त वह है जो प्रत्येक व्यवहार में परमात्मा का साथ रखता है ना, और भक्त बाहर जाते समय प्रभु जी का वंदना करते हैं और कहता कि इस समय मुझे बाहर जाना है, परंतु तुम्हारा दर्शन बिना सुमरण बिना मैं रह सकता नहीं। मैंने सुना है कि आपके अनेकों रूप धारण करने आते, जो मैंने बात कहना आप ऐसा कृपा करो कि एक स्वरूप में आप घर में विराजू और एक स्वरूप से मेरे साथ चलो, इस प्रकार मार्ग में भी परमात्मा के साथ ही रखो। परमात्मा के साथ रखने के आकाशवाणी के सुनो, परमात्मा को साथ रखने का अर्थ क्या प्रभु के मूर्ति को हाथ में लेकर फिरना है? परमात्मा को मन से साथ रखो, मार्ग चलते हुए भी भक्ति करनी है। जो मार्ग में भक्ति करता नहीं वो आंख और मन को बिगाड़ कर रहे हैं। घर आते हैं तो परमात्मा को साथ रखकर परमात्मा को में रखकर व्यवहार करो, ईश्वर से विभक्त होकर व्यवहार मत करो। व्यवहार तो करना ही पड़ना है ना, व्यवहार तो करना ही पड़ता है। व्यवहार छोड़ने से छूटता भी नहीं है, व्यवहार गृहस्थी को ही करना पड़े। ऐसा नहीं साधु सन्यासी भी कहा गया, साधु सन्यासी को भी व्यवहार करना पड़ता है, इनके लंगोटे की तो आवश्यकता पड़ती है ना। व्यवहार उसको छूटता है जिसके ईश्वर के अंतिम कुछ दिखता नहीं है। सुखदेव जी ने महाराज को परमात्मा को ऐसा अनुभव हो चुका था कि आत्म स्वरूप में परमात्मा के दर्शन के आनंद में वे मस्त होकर विचारने थे। पिता को वो कह दिया कि तुम मेरे पिता नहीं और मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, जय कृष्ण करके वहां से प्रस्थान हो गए। अब हम जाते हैं कृष्ण भगवान को। आकाशवाणी के सुन एक बार ऐसे हुआ कि प्रभु राम यानी कृष्ण भगवान ने पूर्णिमा के रात्रि

सुखदेव महाराज क्या कहा, तू मेरे पिता नहीं है और मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। तो वहां पर एक गोपी नकृष्ट भगवान से कहे, प्रभु आपने कहा है कि हम सब रात्रि में पति के त्याग कर का, लेकिन प्रभु हमारा देह के धर्म पिता है, वो हमारा माँ बहन बेटियां देह के धर्म है, लेकिन आत्मा धर्म आप है प्रभु। ये बात सुन कृष्ण भगवान मुस्कुराए, आकाशवाणी के सुन में आलू जो बात सुखदेव मुनि ने कहा, कहा गया है पिता पुत्र का संबंध खोटा है, जीव ईश्वर का संबंध सच्चा है, जो परमात्मा के स्वरूप का सत अनुभव करता है उसी के व्यवहार छूट सकता है। जब तक कहा गया है आकाशवाणी के से, कहा गया जब तक मुट्ठी भर चने की भी आवश्यकता है, जब तक वस्त्र की आवश्यकता है, तब तक व्यवहार पीछे लगा हुआ है। ऐसा समझना, व्यवहार करो, व्यवहार छोड़ना नहीं। यदि मैं तुमसे व्यवहार छोड़ने की कहूँ तो तुम कहो छोड़ने वाले ही नहीं है, व्यवहार छूटता नहीं, व्यवहार तो सभी को करना पड़ता है। जब तक किंचित भी अफेश हो तब तक व्यवहार छूटता नहीं, उसे छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं। जब तक शरीर है तब तक मुट्ठी भर दाने की आवश्यकता रहेगी ना, रहेगी ही, और तब तक व्यवहार बंधन भी करना ही पड़ेगा। इसलिए व्यवहार अवश्य करो, परंतु उसमें विवेक रखो। किस प्रकार विवेक रखो? ईश्वर के मन रखो और व्यवहार करो, इस पे ध्यान करना। याने जो पनिहारनी पानी के घड़े भर कर जब मार्ग चलती है, उस समय वह एक दूसरे के साथ वार्तालाप करती है, परंतु बातचीत में भी उनका ध्यान निरंतर माथे के घड़े पर ही होता है। इसी प्रकार संसार के व्यवहार ईश्वर का साथ सुमरण स्वरूप करो। जगत के पदार्थ में अशक्त रखनी नहीं है, व्यवहार के साथ एक बनी रहो। कहने के तात आकाशवाणी के सुनने वालों, संसार में रहे सब कुछ हम, लेकिन हमें परमात्मा को नहीं भूलना। हम इस सभी बात कहता कई बार कह चुके ना, संसार में रहना है, कहे दुनिया में रहता हूँ, दुनिया के खराब यानी दुनिया में रहता हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, लेकिन सामान का खरीदार नहीं हूँ। कहने के तात संसार में हम आप रहे ना, लेकिन इस पे ध्यान करना है कि एक नाग दिन बंधु बांधव छोड़ करके हमें जाना है। किससे प्यार प्रेम लगाना है? परमात्मा से। मानो से प्यार प्रेम लगाओ, लेकिन ध्यान रखो कि एक नाग दिन बंधु बांधव छोड़ करके हमें जाना है। हमेशा मैं बात दोहरा रहा हूँ, कौन बचा यहाँ, कौन बचेगा, वो किसका माल खजाना है? दुनिया थी, दुनिया रहेगी, हर पंछी जाना है, पंछी कब उड़ेगा? हमें माँ आपको बात पता नहीं है। आकाशवाणी के सुनाल युवाणी द्वारा अपना पर्सन मैं विराम करने जा रहा हूँ। हर ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भरे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।

जी मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ से हमने श्रवण की है श्री पंडित राजकुमार महात्म जी के मुखारबिन से सुंदर सा कथा, और वो भी ये अनहाल कर रहे थे कि दुनिया में कैसे रहना है। तो ये गीत के साथ आपको बता देते हैं कि दुनिया में रहना है तो मेरे प्यारे

हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, की दुनिया में रहना है तो अवश्य काम करो मेरे दोस्तों। काम के बिना यार रोटी भी नहीं मिलती है। फिल्म हाथी मेरा साथी किशोर दा जी की आवाज़ में श्रवण की है हमने।

जी, चलते चलते क्या यही प्यार है। और कहते हैं कि इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, हकीकत में उसे लिबास में नहीं बल्कि इंसान में तलाश करो।

वो गाना ही गाएगा, मुस्कुराएगा, जीवन जीवन खुशहाल में बिताएगा, है ना। हाँ, ये कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगा कर तीर्थ किए हजार। ठीक सुना आपने कि गंगा में डुबकी लगा कर तीर्थ किए हजार। इससे क्या होगा मेरे दोस्त अगर बदले नहीं विचार। हाँ, कि गंगा में डुबकी लगा कर तीर्थ किए हजार, इससे क्या होगा मेरे दोस्त अगर बदले ना विचार।

है ना खूबसूरत गीत जो आपके लिए पेश किया गया है। दिल तो पागल है और दिल तो दीवाना है। आहा, werkzaamheden tussen Eindhoven en Limburg komend weekend van start. Dus dat wil zeggen heel veel verkeerd op onthouden. Dus als u ergens heen moet gaan in die richting, liever uw GPS raadplegen. En ook werkzaamheden tussen Rotterdam en Zwitserland.

लेटेस्ट द न्यू रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए पेश किया गया है द एनिग एक्ट फाहन हिंदुस्तानी रेडियो से।

0: आप लोग
1: आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू की सदाओं से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस तेरी

जो बिन नौतियाल के गीत दिल कर दिल गलती कर बैठा, हम सुनेंगे कवाली, कवाली रूप में।

होगा सहबास फयास कवाली दिल गलती कर बैठा जो जोबिन नौतियाल जी के गाई हुए गीत।

पंक्ति है कि निस्दिन मैं करूं, कहते ना कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। निस्दिन मैं करूं तेरी ही पूजा, नैनों में नहीं आए कोई दूजा। मानो कसम, कसम ले लो,

मैं जानना चाहूंगा आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं, तो आप बताएं, जब तक जवानी तब तक जमाना चाहे जिसे जी भर के सता लो। ये पंक्ति है इसकी कि जब तक जवानी तब तक जमाना चाहे जिसे जी भर के सता लो।

थोड़ी सी भी कंकड़ अगर आंखों में पड़ जाए तो हमारी आंखें बेचैन हो जाती हैं। तो कहना है कि तनिक कंकड़ी पड़त नैन में, नैन हो तो बेचैन।

घर आया मेरा परदेसी लता जी के गाए हुए और ये कवाली के रूप में, जी हाँ कवाली के रूप में हमने सुने हैं। इस बार फिर है कवाली के रूप में।

गया था सरे राह चलते चलते फिल्म पकीसा के, ये लता के गाए हुए गीत है जो हमको सुनाए सहबाज फयाज कवाल जी ने।

सिर्फ सिर्फ सिर्फ फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से आप सुनते हैं सभी स्टाइल के गीत सुनने वाला जो आपके लिए चुन चुन कर और हमारे सभी साथियों जो यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत करते हैं

शाबाश शाबाश, कितने सुंदर से सुनाए। मेरा दिल ये पुकारे आजा कवाली फैशन, शहबाज फयास, ये तो इधर 23 के न्यू कवाली है।

कुछ अच्छे अच्छे नगमे, प्यार भरी नगमे चुन कर रखी हूँ, तो ज़रूर से हम यहाँ से शुरुआत करने को जा रही हूँ उदित नारायण जी की आवाज़ में। अच्छा लगता है तेरा नाम मेरा नाम के साथ, अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जैसे कोई खूबसूरत सुबह जुड़ी हो किसी हसीन शाम के साथ।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल फिल्म का नाम खाकी, म्यूजिक डायरेक्टर इसमें है राम संपत जी। प्यार वो एहसास है जो मिटाने से मिटा नहीं, प्यार वो एहसास है जो मिटाने से मिटा नहीं, प्यार वो पर्वत है जो झुकाने से झुकता नहीं, प्यार की कीमत क्या पूछते हो यारो, प्यार की कीमत क्या पूछते हो यारो, प्यार तो वो अनमोल हीरा है जो बाजारों में बिकता नहीं। Is jezelf durven zijn, samen lachen en huilen en voor elkaar zijn, geven en nemen.

अच्छा लगता है फिल्म नाम से ये सुंदर सा गीत आपके लिए निकाल गया है। आज जो वैलेंटाइन के दिन है, इस वैलेंटाइन के उपलक्ष पर आपके लिए रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी, रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना। रिश्ता बनाना इतना आसान है लेकिन रिश्ता निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे

इतना प्यार करते हैं सनम, वाह रे इश्क क्या कहना तेरा, वाह रे इश्क क्या कहना तेरा, जो तुझे जान ले तू उसी का।

दिल मांगे मोर श्रिया घोषाल उदित नारायण जी की आवाज में सुंदर सा तेन गीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। अनमोल थे वो पल जो बिताए थे तेरे साथ, अनमोल थे वो पल जो बिताए थे तेरे साथ, महसूस आज भी करता हूँ सहला कर अपने हाथ। वक्त नहीं तत मोर्खन मेत खनितन नहीं दू हैत फंदाख आसत कान स्टेल हैत नित ऐत मार दू हैत नू हैत मक एख नित ऐत वारफान हैत लेफन इस अनफोरस्पेलबार दुस खनित फन एलक क्लेन मोमेंट वारफान ये हार्ट जे लाख्त एन वार अप ये गुलुकख बेंट एन वक्त एर नित तत मोर्खन मी मार दू हैत गवोन अप देसे maar doe het gewoon op deze dag, want je weet nooit of je morgen opnieuw weer genieten mag.

सुना है कि बहुत बारिश है तुम्हारे शहर में, सुना है बहुत बारिश है तुम्हारे शहर में, ज्यादा भीगो मत, ज्यादा भीगो मत, अगर धूल जाएगी सारी गलत फैमिलियां तो बहुत याद आएंगे हम।

उदित नारायण जी सुना दिस, ओ मेरे सोना तुम मेरे होना। किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़ना, किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़ना कि उसके पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए, बस ये सोचकर उसका साथ निभाना कि उसके पास कुछ नहीं तुम्हारे

एक बार फिर यहाँ से हमको सुना दे उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी ने। झूठे रिश्ते मैंने किसी के साथ बनाए नहीं, सच्चे बहुत ढूंढे मगर कहीं पाए नहीं। जो मिला उसी में ही खुश रहता हूँ। मेरी उंगलियाँ ही मुझे सिखाती है दुनिया में बराबर कोई नहीं है।

जिस पल के लिए वो पल भी आया, वो पल भी आया कुछ पल के लिए, सोचा सोचा उस पल को रोक लूँ, सोचा उस पल को रोक लूँ हर पल के लिए, पर वो पल भी ना रुका एक पल के लिए।

कहते हे कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम सत श्री अकाल। जोनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी और प्यार की पैगाम। आप लोग को एक बार फिर कहते हैं स्वागतम स्वागतम। हमारा प्रोग्राम हर मंगलवार को चलते ही शाम को 5 से लेकर 6 बजे, ले कभी कभी 6 से लेकर 7 बजे, यानी शुक्रवार को फ्राइडे को चलते हैं 6 बजे हमारा देश विदेश के समाचार। रविवार के सोमदाह को दिन में 1 बजे हम हर हाल करते हैं। हमारे जनता, हमारे दोस्तों, हम तुरंत चलते हैं अपना सूरीनाम की ओर, वहां से हम आज शुरुआत करेंगे अपना समाचार। आप लोग जानते हैं कादेंसी कौन है भैया? एक कादेंसी जो है, और एक कादेंसी है भैया फेहा पेयर रहा कादेंसी, और एक आर्टिस्ट है भैया कादेंसी, आर्टिस्ट भी हैगा। तो ये फेहा पेयर रहा, और यहाँ पर अब अपना बयान यहाँ पे करते हैं। कादेंसी बोले है वे हैव सो वी सो ओ खेन इरलक फलक, बोले हमार जनता जो न है सूरीनाम के, बोले इरलक ना है,

बढ़िया बांचित हो रहा भैया, तेल के प्राइस फिन चढ़ गए, ओतो के तेल के प्राइस फिन चढ़ गए भैया, ओली प्राइस ऑफ द होक्स्ट निफो इन फिर वीकन, चार हफ्ता के भीतर में तेल के प्राइस बहुत चढ़ गए भाई, ओली प्राइस इन हेवन होक्स्ट निफो चार हफ्ता में, अमेरिका बोले है सोमवार के बोले है स्ट्रात होमस में बोले ओके ब्लॉकेर कर, इसे अमेरिकन से प्रेसिडेंट डोनाल्ड बोले है ऊपर से ट्वीट तक प्रोसेस उमांगे तोल है फकरे एब अल्या इन

वहमो गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

और दोस्तों हम अपना समाचार को आगे को बढ़ाते हैं। अब देखो जनता क्या हुआ है मार्टिन लूथर किंग वेक में 45,000 भैया एसआरडी रो वैले कटली सेनानी। हाँ कटली से एगो आदमी कटली से गए ले उतरा पैसा रोफ करके चल गए है और जो ओफर फाल करे से कटली से ना दिखाई से काटी से भैया स्नेफर वॉर्नर ऑफ आंसन बोफन लिप ऊपर से ओठ काट दे से रमिया के नाक ना काटी से ओठ काटी से भैया और फिर तक दैसन मार के चल गए भाई। सुरीनाम के बाद बतियाल हम जाएल उक्रेन के भैया रुसलान आदमी मारे है उक्रेन में बेसुल्ले है और उक्रेन तेल के सब कुछ पराठा कर ले बा फीनी रुसलान में कि हुआ पे जनता के तेल ना रहेगा। अब उक्रेन एक और बवाल करी से पुतिन के ऊपर उक्रेन फॉल से आन आजोफ आन न्यू हो पैंडो से फॉर पुतिन। अब ये सब का करे उक्रेन जे तरह रुसलान के बोट समुंदर में बात तेल ले जाए कब ओके दागे भैया उक्रेन फॉल रेम अन वीक फ्रॉक्स के इपन टैंकर्स एंड स्लीप बोटन ऑफ द सी फन आसोफ एंड द फैंसी एक्सपर्ट पैट्रिक बोल्डर फन द een forstrees legt uit wat de gevolgen zijn voor Rusland. De Rusland kiesingen ouderbarka aanpad hoege bhaiya. Socho, ab deko, waarom de NAVO veel miljard euro aan de vluchtuig uitgeeft. Ja, wat aan NAVO veel miljard paisa uitgeven kiesiga. Maar wat doet die toestel in de lucht? Ik heb maar hem zo gelukt toe aan mijn kontje kare he. लुख तो हमें कौन ची करे भैया एक बारे में आप लोग को हम जरूर बताएंगे। साथ साथ भैया गासा में गासा तो लोन जानो है गासा में पालस्तीन के बताएला पालस्तीन से बोलेंगे को गासा बा हमास इसराइल जाए के को पुलिस ब्यूरो के दागे से भैया जो पुलिस ब्यूरो हुआ कहाँ बोले हैगा हमास टेररिस्ट ग्रुप हमास ड्राई कर रहा और वहाँ पे जो दागी से वहाँ पे स्कूल सब मर गए है बे इसराइल से लुख्त लुख्त अनफा ओपन ब्यूरो फॉर पुलिस नोर्थलैंड के गासा में पालस्तीन से ऑथोरिटी तन आठ गो आदमी मरल हुआ पालस्तीन से बवेकिंग हमास दी द पुलिस कंट्रोलर द हेव द अनफॉल फॉर ओर्डील एंड सेग दैट द शेफ फॉर द ब्यूरो अंडर द डोडन इज Israël heeft opnieuw melding gemaakt dat een luchtaanval pinkeri terroristen pe John oktober ze bolle us op Gaza me ba Israël blijft aanvallen uitvoeren. Daarbij zijn volgens Palestijnse autoriteiten 1100 Palestijnen merge he en 3578 Palestijnen chotaige bhaiyawan idhar jab Kabul shuru kari se Amerika dage ke Iran ke idhar shuru kari इसराइल हमास लोग के दागे के भाई तो ये बात है। एगो आदमी भैया बर्लिन में पकड़ा ने 22 तक औरत के ऊपर क्रख कर ले रहा 68 के आदमी एगो बर्लिन में है और बतावे हैगा कि ना ना हर फरदोफन एंड फरक्रखन फन 14 फ्राउन फरदोफ करके फरक्रख कर लेने 14 औरत के दी है इन टोटल 22 केस सो हेमन फरक्रख बाप रे 22 keer 14 औरत को फरक्रख कर ले रहा। ook zei hij her gevallen hebben verwond dat meldt Duitser obole de slachtoffer herinnerde zich de daden ook wordt nog onderzocht gedaan dat mogelijke andere gevallen ke aur kuch kare raha video pe bole van de verkrachtingen werd aangetroffen de vrouwen ontmoette hij via datings app en drogeerde hij met een combinatie van alcohol en slaappillen mogelijk zijn er nog maar slachtoffer in totaal worden 58 vrouwen in verband gebracht met de zaak. Een van hen zou hij 36 keer hebben verkracht tussen 2010 en 2014, omdat niet sluitend kon worden aangetoond dat hij zei dat ook zij werd gedrogeerd, kunnen de daden vooralsnog niet worden vervolgd, Marijenta.
ते सोचो ये न मिया को रकम अपन हुआ पे फरक्रख करता सबके भाई बड़ा बड़ा चीज हुई दुनिया पे दोस्तों। यहाँ बताओ ओंदर हंडलिंग जैसे इसराइल एंड लिबानन हर फात इन रोमन वन बोले ट्रेम बोले हम लोग खसप्रेक कर सकेला मैं बोले लड़ाई ना रुकी बोले हमें चाहिए लड़ाइया दोरो जाए ईरान के और अमेरिका से बोले इन तुसे मंगियो खसप्रेक करे तो इस आलती बरेट। तो ये बात है हमारे जनता एक आदमी भैया 30,000 पैसा गए लेनी करी से मां अंदर पान अपन सोना के अंगूठी बोले धरी से ब्लैक भइल अख्तराफ की सोना नारा भाई ने पची दे के देर तक दैसन उ ले से एगो सेशन देर तक यार खान के फर फरक्लार करे कि ऑनफे टू यार एक्टिव इज ऑल हेल्थ की तर वो पैसा लेनी करे हैगा सेशन देर तक यार के फियस एंड कंट्रोल फॉर स्ट्रेक्ट है लीनिंग एंड वार बे क्लांदर खुदरन अस अंदर पान के अनबीडन दर बे वर्डर पर्सन के गिवन फ्रॉम द क्लांद आंगेबोडन खुदरन एन uitbetaalde bedrag geregistreerd en vastgelegd in een overeenkomst op geldskieter रहा बाकी geldskieter भैया बाउरो का नेप सोना ले ले रहा और 30,000 के भर दे से टोटल खवेक फ्रॉम 30 ग्राम बतावे है फोल्कन बस्केकबार गिवन सो द रिंग एंड फ्रॉम 14 kraat goud zijn. De gebruikelijke test om de echtheid van de sieraden vast te stellen bleek echter niet correct te zijn uitgevoerd. Toen betekent hij dat 2 ringen inderdaad had beleend en daarvoor 30,000 SRD Upaira. Volgens hem waren de ringen zijn eigendom, maar wist hij niet dat deze geen echt goud waren. Hij gaf aan bereid te zijn de geleende bedrag terug te betalen. तो ये बात है हमारी जनता हमारा समाचार यहाँ से धीरे धीरे खत्म होता का है। अब देखो भैया एगो आदमी उत्तर के बतराई चोरी करता सरनाम में फिर अंदर तक यार के भैया वो पकड़ाएगा दाफ तुरक के ओ तो के बतराई वो चोरी करत रहा हमारे नानी और कहा बोलियो भैया चोरी करत रहा हाँ।

बस एक गीत से अपना समाचार को हम खत्म करते हैं और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार, प्यार भरे नाम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर 1 है हमारा नाम।

और तस्वीर से भी और निकर के सामने आ, और कौन आएंगे, महबूबा ही आएंगे हमारे यारो। तो प्यार भरी सॉन्ग है, क्या दिल ने कहा है।

दिल ने कहा आओ क्या मैंने सुना लवली सॉन्ग हम आप लोग को आज सुनाएंगे दोस्तों तेरे नाम लिया और क्या किया क्या किया तेरा नाम लिया और क्या किया सुना जाए।

तो पूछना तो पड़ेगा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, कितने दिन कहाँ थे। तो वो कहेंगे कि इतने दिन जहाँ भी थे लेकिन तुझे याद तो हमने किया है। तो अगला प्यार भरी गीत कौन है, क्या है? तो ये कहते हैं कि जब आप कहीं हो और किस उसको कुछ दिन नहीं देखा है तो लगता है कि तुझे हमने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है पता नहीं चलता है। तो अजनबी आपको बताएंगे कि कहाँ तुझे देखा है।

अजनबी, अगर ये अजनबी आप हो तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। अजनबी को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो अगला गीत के ओर हम बढ़ते हैं। आप सभी को यानी कि शादीशुदा लोग के बारे में आपको हम इस गीत को सुनाते हैं। मौफी का नाम है सौतन नेखंतीन्द्रियन तख्तका। ये फिल्म है दोस्तों और ये मूवी है। इसमें एक सुपर हिट सॉन्ग इसमें गाया है किशोर दादा ने, आओ सुना जाए। पहले भैया सूरीनाम में लोग जानते थे तो लड़की देखने को तो आते थे कोला, और इस गीत में क्या आते हैं आओ सुना जाए।

का ये सॉन्ग है, मोफी के नाम है सौतन दोस्तों, सौतनिया सौतन मोफी के नाम है। इसके बाद हम और आगे को चलते हैं, रोमांटिक सॉन्ग, एक और रोमांटिक सॉन्ग हो जाए आज अलका का, अलका याग्निक और द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार कुमार शानू की ओर हम चलते हैं। कौन सा सॉन्ग है दोस्तों, कौन सा सॉन्ग है, नवीन सरवन का म्यूजिक है।

ये दिल आशियाना, और उसके बाद हम चलते हैं, कभी कभी लोग को पूछना पड़ता है और कहते हैं एक बैर खैन अख्तिनवेर, लोग बोलते हैं एक बैर खैन अख्तिनवेर, और एकवा बोले है एक वर्थ अख्तीन। तो ये गीत 18 बरिस से के उम्र का गीत है दोस्तों, एक सुपरहिट सुपरहिट फिल्म सुहाग का है, जो नहीं खती होंद नहीं हनन जीवन तख में, और ये मूवी हलचल मचाए थे।

उम्र हो गया है तो कोई जतन करना चाहिए, और जतन के बाद हम चलते हैं, क्या आपकी जो आंखें है वो भी काली है, काली है या गोरी है या ब्लू है या लाल है, ये सवाल हम नहीं करता है, करते हैं लवाजी कर करते हैं।

और दोस्तों तू मेरी आसमां परे और नए गीत कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे करेंगे। मत कर इतना गुरूर, कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं। तो पंकज उदास अलका यागनी क्या बताता है, मूवी के नाम है आदमी। खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम और कितना चाह छुपाएंगे तुम, और ये गीत है

छुपाएंगे बैठे अमीर खान या नाचो। दोस्तों जोंग ही जोंग आपको हम सुनाते हैं आंची और आप वहां हम यहां कि कभी राधा क्या बोलते हैं आओ सुना जाए।

0: से चलता हूँ।
1: और बोल ना राधा बोल, आज कुछ बोल किशन और राधा के सॉन्ग में आज हम मतवाला है दोस्ती, और राधा और कृष्ण का जोड़ी अत दुनिया पे और उससे जबर जोड़ी कहीं नहीं दोस्तों।

गोविंदा तेरे किशन कन्हैया मूवी का नाम है मेरा लहू। और दोस्तों आज कुछ किशन की मूवी में हम हैं तो एक और हो जाए एक जान है हम आसमां के आसमां पे लिखेंगे दो।

जी हाँ लता जी, मैथ मुकेश, मैथ मुकेश और लता जी मिलके आपको सुनाए फिल्म फिल्म मैं और मेरा भाई में अर्जुन के साज पर, अर्जुन के साज पर ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए बदलाव के तौर पर हम आपको ये सुनाते हैं यहाँ, चलो सुनते हैं इस तरह से बदलाव के तौर पर आ रहा है ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

वाह क्या फीलिंग है, इतनी फीलिंग से पहचान लेंगे, वाह क्या बात है। चलिए नए पुराने गीतों के संगम में हम पेश कर रहे हैं, आपको सुना रहे हैं रफ़ी साहब की ये गीत, क्या ख्याल है।

0: ने चांद देखा है, ये शानदार गीत चला फान हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में।
1: है क्या ख्याल है, हवा हवाई

आई आप सुन रहे थे कृष्णमूर्ति, कविता कृष्णमूर्ति जी आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत फिल्म मिस्टर इंडिया में से निकाल कर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जो लोग चुन की मीटर पर, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए, क्या ख्याल अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं, आप भी हैं मैं भी हूँ, बस सुन लीजिएगा।

हमारा फसाना मिट नहीं सकेगा जमाना। और अभिजीत जी और अलका जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत जो हमने पेश की और फरफान हिंदुस्तानी रेडियो, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं। जी हाँ, और प्रोग्राम में हमने रखे हैं देखूं तो बाबू सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल। चलो सुनते हैं। हाँ,

वाह क्या गीत है, हम आपको सुनाएं शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। जैसे मैंने कहा, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो, फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम का। जी हाँ, अगर आपने प्रेम की है तो ढाई अक्षर प्रेम का आपको अवश्य मालूम होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है, ये फिल्म तो आपने अवश्य देखे, फिल्म डर तो आप देखे होंगे। लता जी और उदित नारायण मिल के आपको ये गीत सुनाते हैं शिव हरि के साज पर। तो आप शायद सोचोगे कि शिव हरि कौन है। शिव हरि वही जो संतूर वादक है, मशहूर संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, और हरि है हरि प्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाता है। इसलिए नाम लंबा था तो छोटा कर दिए शिव हरि के साज पर। और ये शिव हरि, यही दोनों ने फिल्म, क्या नाम है, दिमाग से निकल गया अभी था, अच्छा अभी हाँ, फिल्म सिलसिला में ये दोनों भी साज बजाए थे। चलिए उन्हीं की साज पर हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

तू मेरे सामने, या लता जी और उदित नारायण मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये। जी हाँ, इस तरह से आ रहा है, क्या ख्याल है? कुमार सानू और अलका याग्निक फिल्म बाजीगर में।

फिल्म बाजीगर में से निकाले ये टाइटल सॉन्ग पेश किया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाए हैं। प्रेम प्यार की मोहब्बत की बातें, दूर जाने की बातें, बुलाने की बातें, बहुत सारी बातें हो चुकी प्रेम प्यार मोहब्बत में। लीजिए मैं कपड़ों की बात करूँगा तो आप सोच रहे होंगे अरे गंगा क्या हुआ तुम्हें बुखार लगा? जी नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ थोड़ा गला में खराश है लेकिन ठीक है। चलिए मैं कपड़ों की बातें कर रहा हूँ, अगर जब कपड़ों की बातें हुई तो क्या ख्याल है?

0: जी क्या बात है, सुनिधि चौहान, सुनिधि चौहान आपको भी सुनाए हैं। चाहो जाए दिल्ली चाहे आगरा, नहीं करना झगड़ा क्योंकि मिलेगा घाघरा, तो क्या ख्याल है। चलिए अगला गीत, अगला गीत हम चलाने वाले हैं, चलते हैं इस तरह से, सुनिए, ये भी एक धमाकेदार गीत है।
1: हाय हाय

वह क्या बात है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। बिहार लूटने के बाद क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊँ?

0: ओए कठोर, तेरी कमर पे तो ये कमर बंद हो अभी सलमान जैसा।
1: अच्छा तो ये वाकई आपने सुने ना, ये जब पड़ोसी के चूल्हे में आग लगी ले, भैया शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है देखा जाए फिल्म जीत का, फिल्म जीत में से निकाले हैं, चलो सुनते हैं ये गीत।

वाह क्या बात है यारा, ओ यारा, आपको सुनाया गया फोन के कार्यक्रम में। और गाने वाले थे अलका याग्निक जी और विनोद राठौर। चैनल पर आप चून हैं, जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए हम आगे चला रहे हैं और आपको सुना रहे हैं ये गीत, इस तरह से आ रहा है।

कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, आप थोड़ी रेस्ट कर लिए होंगे यानी थोड़े आराम कर लिए होंगे, अगर आराम कर लिए हैं तो लीजिए, हम आपको फिर एक बार स्पोर्ट्स हॉल से दूर रखते हैं ना, इस तरह से सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे उमर जी की आवाज़ में मेरा साया साथ होगा। उमर और निसाम जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम में आ रहे हैं नदीम खान जी और नदीम खान आपको सुनाने वाले हैं जिंदगी चार दिन की ना रूठो सनम।

जिंदगी चार दिन की, ना रूठो सनम, फिर मिले या ना मिले। अभी आप सुन रहे थे नदीम खान जी की आवाज में। सुनने वालों, एक नया गीत जो हाल ही में अंदर आया है और आपको सुनाने वाले हैं जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन, ये दोनों बाप बेटी है और इतनी मधुर भरी आवाज में इन दोनों ने ये गीत को गाए हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं। तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए।

मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए, अभी आप सुन रहे थे जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन जी आपको सुनाने वाले थे इस विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन। मैं नदिया की धारा वादिका राम सुकुल और स्टीफन बैताली आपको सुनाने वाले हैं।

FN42 और वादिका राम सुकुल आपको सुनाने वाले थे मैं नदिया की धारा बाहे तेरी किनारा। धीरज लाला राम जी प्रोग्राम में आ रहे हैं वादिका राम सुकुल के साथ में मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरी सनम तेरा खत मिला भी आप सुन रहे थे धीरज लाला राम और वादिका राम सुकुल जी की आवाज में। रायन मनोरथ आ रहे हैं प्रोग्राम में, मैं प्यार का दीवाना।

रायन मनोरथ जी से आप अभी सुन रहे थे। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे, तुमसे एक मैशो भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। दविंदर सिंह शिवनाथ और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं, दो साथी जीवन के।

अभी आप सुन रहे थे दो साथी जीवन के, दविंदर सिंह शिवनाथ के साथ में सविता सिंह आपको सुनाने वाले थे। इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामचेतन आ रहे हैं प्रोग्राम में एक मेदली के साथ।

अनिल रॉय और प्रशांत रामचंद्रन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग जब जब बाहर आए। अब तो है तुमसे यानी एक मैथिली आप सुनेंगे काश बी की आवाज़ में।

आकाश बी की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये मेडली सॉन्ग। रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं आपके आ जाने से।

जय शिव प्रसाद और रायन मनोरथ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। उमर वाहिद हुसैन आ रहे हैं प्रोग्राम में। घटा छा गई है

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशअप द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशअप। चलिए मिलकर सुनते हैं

हरीश सुखदेव जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबका ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिल्बा का क्या लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलिया भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीन बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेशा शिवपॉल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: What's this smart?
1: What is what?
0: What's this here, so? Oh. Explain, Mark. Let me hear.
1: I can tell you the truth. You sitting? I had emergency.
2: अभी आप सुन रहे थे मलेसा शिरपोह की आवाज़ में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा

गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तुम्हारे प्रिय प्रिय साथियों, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ हमारे भारत देश का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का महान गायिका, जिनके गला में तो स्विंग सरस्वती माँ बसी थी, सुरु का देवी, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे ये महान संगीतकार जयदेव वर्मा जी का बनाया हुआ ये अति सुंदर बयान, और खास करके लिखा है नक्श लियालपुरी जी ने, तुम्हारे लिए अग्निहतिंग आख्तन सीख।

masterpiece of composing by maestro Jaydeo Varmaji. और Queen of Melody लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान एड फिल्म तुम्हारे लिए 1978। रिकॉर्ड अति सुंदर बयान मैं रख चुका हूँ प्लेयर में और इस बार लाते हैं फ्रॉम द सेम मूवी तुम्हारे लिए छोटी बहन लता जी का नाइटिंगेल उषा मंगेशकर नक्शिलालपुरी के लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान कंपोज बाय मास्टरो जयदेव वर्मा मोरे तरस तरस गए नैना स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम

अति सुंदर बयान श्रोताओं ने सुना, आपकी याद आती रही। एड फिल्म गमन 1980, कंपोज बाय मैस्ट्रो जयदेव वर्मा और आवाज थी छाया गंगुली जी का। लिखा है मखदूम मुहिदीन ने अति सुंदर बयान को, ब्यूटीफुल गजल। अगला बयान, आ प्यार की बाहों में एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी सुरेखा देवी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान। ऐड फिल्म चांद ग्रहण मिल के सुनते हैं।

सितारे ने न जाने कान में क्या कह दिया, आसमाने सर झुकाया, जिस्म शर्माने लगे।

क्या बात है, क्या हंसी है। उस जमाने के गाने वाली द ग्रेट वॉइस के मालकिन अपार्ट स्टेम फैयाज जी, फिल्म गम्बीश कंपोज बाय मास्टरो जयदेव वर्मा, आसमां पर एक सितारा, क्या बात है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है यारो, जोर तोर से गीत और गजल आप सुन रहे हैं संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम में। महान संगीतकार पुराने जमाने का यार, 50s 70s मास्टर जयदेव वर्मा जी के कंपोज किए हुए नगमे आप सुन रहे हैं। अगला बयान, किया पिया पे किया जादू पर मैंने क्या किया, क्या बात है। What zijn die teksten zo mooi geschreven zeg. Or, het is een bejaan uit de film Trikon ka Chautha Kaun 1986 mein release kiya gaya tha. Usi film mein se ye thi sundar bayan aap sunenge. Us zamane ke ek aur mahaan gaane wali, kya baat hai. रात की किया पिया, वाओ व्हाट अ न्यूमन सेग। मिलके सुनते हैं अ ग्रेट कंपोजिंग बाय मैस्ट्रो जयदेव वर्मा जी।

क्या बात है, किया पिया पे किया जादू, पर मैंने क्या किया, क्या बात है। डिफिकल्ट सॉन्ग गाने के लिए छाया गंगुली जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। ऐद फिल्म त्रिको का चौथा कौन नीतिन सेसन तख्त कंपोज बाय मास्टरो जयदेव, और लायरिक्स था इस गाने का लिखने वाली माया गोविंद जी ने। तो आज का इस हसीन स्पेशल माएस्ट्रो जयदेव वर्मा का एक आखिरी बयान आप सुनेंगे यारो, और धीरे धीरे भी जितने गाने मैंने सेलेक्ट कर चुका था मेरे ख्याल से आने वाले हफ्ते में वो सभी मैंने सुना चुकाऊंगा आप सभी को, तो उसके बारे में कुछ जानकारी मैंने भी रिसर्च किया है, तो वो भी मैं सुनाऊंगा आप सभी को आने वाले हफ्ते में। तो मिल के सुनते हैं रात के पिछले पहरों में आशा भोसले जी का गाया हुआ अति सुंदर बयान ऐड फिल्म अंजलि 1957 कंपोज बाय मास्टरो जयदेव वर्मा जी, स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

स्थानीय रेडियो का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हिंदुस्तानी रेडियो इस्तिफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनातिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स अंत बदंत है सो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें इश्तिहारे, तो या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार, तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। डाउन सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो ना, अपमान पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी बार हम लोग का ऐलान कर देंगे, और ये भी की फाइट सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी पहले van maandag tot vrijdag van 9 uur is morgens tot 5 uur middags op de volgende telefoonnummers kantoor 073562247 of Studio Katarka nummer 073262277. De job hier radio kan kaam hona, denk aan Fahun Hindustani Radio. Je bent van harte welkom. राम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप है तो हम लोग है ना। बेंट यू नो खेल फन फा हूं हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। En recent hebben we ook nog onze eigen karaoke team. Dus blijf ons volgen via social media en ook via onze programma's. Zo, Abhyakar is chota aur mota sa jo Fahon Hindustani Radio ka parivar hai na, usme Abhyakar shamil ho jaye. सभी जानकारी 0735622747 पर आप तार करें एंड फ्रांक द मेस्ट्रो जॉनी नंबर वन। एक दम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे टॉट फिल्म मैं तेरे लिए, जो रिलीज किया गया था 1988, और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मीनाक्षी शेषरारा जी के साथ, और नूतन जी भी इसका फिल्म में काम किए हैं। संगीतकार बप्पी लहरी के साथ है और सभी गाने लिखा है देवानंद का छोटा भाई श्री विजय आनंद जी ने। तो कुछ नगमे रह गया था सुनाने के उस फिल्म में से, तो हम एक अति सुंदर बयान मैं रख चुका हूँ प्लेयर में आप श्रोताओं के नाम पे। जाने से लगते हो मैं तेरे लिए, बप्पी लहरी के साज पर और उन्हीं के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल।

ब्यूटीफुल सॉन्ग देखा जाए तो बप्पी लहरी के सांच पर उन्हीं के आवाज में साथियों के साथ इंटरव्यू फिल्म मैंने तेरे लिए 1988 वादा निभा दो मैं तेरे लिए। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को फ्रॉम द मूवी मैं तेरे लिए, अमित कुमार जी के ब्यूटीफुल आवाज में और साज है बप्पी लहरी जी का।

दिलों को मिला रो और वादा भी निभा रो। ऐसी फिल्म मैंने तेरे लिए 1988 अति सुंदर बयान अमित कुमार और साथियों के आवाज में। अगला बयान आवाज दे तू कहाँ है मैं तो तेरे लिए टाइटल सॉन्ग। और एक बार फिर किशोर दा का सुपुत्र अमित कुमार जी के ब्यूटीफुल आवाज में बप्पी लहरी के साज और विजय आनंद जी के अल्फाजे।

composed by Bappi Lahiri और अलवाजेथा देवानंद जी का छोटा भाई विजय आनंद जी का। अगला बयान, मन के मंदिर में जलती रहे एक दिल को छू लेने वाला नगमा है। एड फिल्म में तेरे लिए गजल स्टाइल है। कंपोज एंड अरेंज बाय महान संगीतकार डिग्रेट बाप्पी लहरी और अल्फाजे है, क्या अल्फाजे है विजय आनंद जी का। गायक है महान गायक एडियार 80-90 श्री अनूप गोशाल जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये थी सुंदर बयान, आप सुनिए।

क्या बात है, रोटे खड़ा हो जाते हैं ऐसे ऐसे नगमे सुन सुनकर। ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज अरेंज बाय महान संगीतकार गायक प्रोड्यूसर द ग्रेट बप्पी लहरी जी, और गाने वाला था महान गायक एक यार 80-90 श्री अनूप घोषाल जी। तो साथियों, सभी नगमे फिल्म मैंने तेरे लिए का 1988 मैंने आप सभी को सुना चुका। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो रिलीज किया गया था 1989 में, और इस फिल्म में देवानंद साहब जी ने काम किया था महान अभिनेता भैया भरत द ग्रेट मनोज कुमार जी के साथ, मलकाए हुस्न श्री रेखा जी के साथ, और महान अभिनेता शशि कपूर जी भी इस फिल्म में काम किए हैं। संगीतकार है उत्तम जगदीश जी, और गाने वाले तो एक से एक आप सुनते रहेंगे। और पहला नगमा उस फिल्म में से लेकर आ रहे हैं आप सभी के सेवा में पद्मश्री महेंद्र कपूर जी और उत्तम जगदीश जी, क्या संगीत दिया है इस फिल्म में। मिलकर सुनते हैं ये अति सुंदर टाइटल सॉन्ग, मैं एक क्लर्क हूँ।

दिल को छू लेने वाला नगमा, कुछ आंसू भी निकल आते हैं इसी से नगमे सुन सुन के ना। फ्रॉम द मूवी मैं एक क्लर्क हूँ, मनोज कुमार पे फिल्माया गया है अति सुंदर बयान, महेंद्र कपूर जी के ब्यूटीफुल आवाज में, संगीतकार उत्तम जगदीश के साथ, फिल्म क्लर्क टाइटल सॉन्ग।

साथियों, कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। किसी को चाहो तो इतना चाहो कि वो किसको और चाहने की सोच भी ना सके।

0: वो किसी और को चाहने की सोच भी ना सके। हम भूल जाते हैं उसके सारे सितम, हम भूल जाते हैं उसके सारे सितम जब उसकी थोड़ी सी मोहब्बत याद आती है। और सितम का मतलब है अंडरड्रकिंग, सताना। अगला शेर जो लिखा है यारो, चलेंगे तेरे साथ तेरा साया बनकर, छोड़ ना देना बीच राह पराया समझकर। ये सब दो लाइन शेर शायरी है, यही तो खूबी है ना, इतनी कम शब्दों में लोग कुछ ना कुछ बता देते हैं, पूरी कहानी बता देते हैं। सोचती हूं कि मैं कुछ और भी सोचो, सोचती हूं कि मैं कुछ और भी सोचूं, मगर टूट जाते हैं ख्यालात तेरी याद के बाद। किसी और तरीके से भी मिल जाती है क्या मोहब्बत, किसी और तरीके से भी मिल जाती है क्या मोहब्बत, हमें तो दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा तू मेरी सांसों में, दिल में, ख्यालों में, धड़कन में, रूह में, नस नस में, ये मैंने कहा, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं यारो। शिकायतें वहां होती है जहां ऐतबार ना हो, शिकायतें वहां होती है जहां ऐतबार ना हो, मेरा तो यकीन ही तुम हो तो शिकायत कैसी। तो ये था कुछ शेर्स हमारे शेर्स की चाहने वालों के लिए। आगे के प्रोग्राम में कुछ और कोशिश करूंगा सुनाने के लिए। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों, एक और अति सुंदर बयान, और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, और साथ दे रहा है मुकेश जी का सुपुत्र नितेन मुकेश जी। रख गीता पे हाथ, क्या बात है, महान म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना ने मिलके अति सुंदर बयान को सजाया है।
1: और बेल आइकन को प्रेस करें

रखा गीता पे हाथ, क्या बात है, अति सुंदर बयान। एड फिल्म क्लर्क 1989, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और नितिन मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। कंपोज एंड अरेंज बाय उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना। हमारे साथियों, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

फनफुनटे हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है नतीजतन बलाइस्त्रेफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा faunfm.nl पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागत दम कार्यक्रम में नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत सो लोबी लोबी नांगा ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाई से हो इश्तिहारे हो जरूरी खबरें या कॉमर्शियल्स आप बनवाना चाहते हैं किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो हम लोग अब मात पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो आप सभी से सदियों से यही कहते आ रहा हूँ यारों कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी बेलेटेडेंस कंटोर यूर फन मांडाग तोत फ्रेडाग फन नीग यूर स्मार्फंस तोत फेव यूर स्मिडाग्स दफ्तर कतार का नंबर 070-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर 070-362-2077। जो भी रेडियो का काम हो देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद क्योंकि आप है तो हम भी है। इसी तरह जरूर ढंढोड़ा पीते रहना यारो हम लोगों के बारे में। बेंतिनों के लिए फनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी 970-365-2247 पर आप तार करें। एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम के तरफ यारो। बीते हुए सप्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म संगम तक जो रिलीज किया गया था 1964 ब्यूटी क्वीन वी जयंती माला जी के साथ राज कपूर जी ने यानी हाँ राज कपूर जी और राजेंद्र कुमार जी इस फिल्म में भी काम किए हैं तो मिलके काम किए हैं। इस फिल्म में संगीतकार है शंकर जय किशन। तो दो नगमे रह गया था सुनाने का इस फिल्म से तो तुरंत मिलके सुनते हैं ये बहुत ही प्यारे मज़ेदार सॉन्ग जो लोगों को उस ज़माने में काफ़ी पसंद लगते थे कुछ को नहीं कुछ को ज़्यादा। मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का ये गाया हुआ अति सुंदर बयान मिल के सुनते हैं फ्रॉम द मूवी संगम।
1: मैं बुढ़ा

Beautiful song, mazedaar song from the movie Sangam, 1964. Composed by Shankar Jai Kishan aur sunai aap sabhi ko Bharat Ratna, Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji. Ek aakhri bayan aap sunenge from the movie Sangam. Beautiful song, Ich liebe dich, I love you. Us zamane ka mashhoor gaane wala Vivian Lobo ke beautiful आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे. लिखा है ये अति सुंदर बयान को शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जी ने मिलके और कंपोज किया है शंकर जय किशन.

Ich liebe die, I love you. From the movie Sangam 1964, Vivian Loboke, beautiful awaz mein composed by Shankar Jay Kishan. तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, सभी नगमे फ्रॉम द मूवी संगम आप सभी को सुना चुका हूं। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1964 में, फिल्म जिंदगी। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है एक बार फिर मलकाय हुस्न विजयंती माला जी के साथ, और महान अभिनेता द ग्रेट राजकुमार जी, महमूद हेलन और जीवन भी इस फिल्म में काम किया है। संगीतकार एक बार फिर शंकर जय किशन। तो फिल्म जिंदगी में से अब आप नगमे सुनेंगे। अगला बयान शुरू का बादशाह किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी को लाते हैं प्रोग्राम में, और वो सुनाते हैं आप सभी को पहले मिली थी सपनों में। हसरत जय पूरी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान रवि साहब जी के मधुर आवाज में, संगीतकार शंकर जय किशन के साथ पर।

Beautiful song, wonderful song, Shrutawani, suna uit de film Zindagi. Ravi Sahib ji ke beautiful awaaz mein. अगला बयान एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी आई द फिल्म जिंदगी हम प्यार का सौदा करते हैं

थे दिल को छू लेने वाला नगमा हमने जफाना सीखी। एड फिल्म जिंदगी नीति फिल्म सेस्टर सुर का बादशाह रफी साहब जी। तुम्हारे ये साथियों कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है कुछ दोस्ती के बारे में शेयर्स यार कि जाने वो क्या सोच रही थी अपने दिल में सारी रात, जाने वो क्या सोच रही थी अपने दिल में सारी रात, प्यार की बातें करते करते उसके नैन भर आए थे। मत सोना किसी के कंधे पर सर रख कर ऐ दोस्त, मत सोना किसी के कंधे पर सर रख कर ऐ दोस्त, क्योंकि जब वो बिछड़ता है तो फिर तकिए पर भी नींद नहीं आती यारो। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी यादें और तस्वीर ही है, तुमसे अच्छी तो तुम्हारे यादें और तस्वीर ही है, जिनको जब दिल चाहे जिनको जब दिल चाहे बुला लूं और जब दिल करे गले से भी लगा लूं। माना जमाना ये देता है ताना कि थोड़ा आवारा हम हैं, माना जमाना ये देता है ताना कि थोड़ा आवारा हूं मैं, लेकिन जब हम जैसे हूं अब तो तुम्हारा हूं मैं और सदा ही रहेगा।

हम दिल की कमल ले देंगे, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जिंदगी, लता जी और साथियों के साथ। कवर अति सुंदर बयान, थोड़ा क्लासिकल स्टाइल में आप सुनेंगे। और एक बार फिर सुरों का बादशाह रफी साहब और आशा भोसले जी मिलकर सुनाते हैं घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय शंकर जय किशन, और लिखा है हसरत जयपुरी।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग, घुंघरुआ मोरा छम छम बाजे। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। प्यार की दुल्हन सदा सुहागन, एक बार फिर ये अति सुंदर बयान को सुनाने वाली है आप सभी के लिए। मिलके सुनते हैं शंकर जय किशन के साज पर ये अति सुंदर बयान की प्यार की दुल्हन सदा सुहागन।

हूं प्रोग्राम में, पद्म भूषण मन्ना दा इस बार प्रोग्राम में एड फिल्म जिंदगी, और वो सुनाते हैं आप सभी को मुस्कुरा ला दिले मुस्कुरा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मन्ना दा जी के ब्यूटीफुल आवाज में एड फिल्म जिंदगी शंकर जय किशन की सांच पर। छूने ना दूंगी मैं, दोनों बहने क्या बात है, लता जी और आशा भोसले जी टुगेदर मिलके सुनाते हैं छूने ना दूंगी मैं, शंकर जय किशन की साज पर। जिंदगी द मूवीज़

0: वीणा देवी। शादी मुबारक, तुम हमेशा खुश रहो।
1: गोपाल, आपने हमेशा मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दिया है। मेरे जीवन में ये खुशी सदा बनी रहे, उसके लिए अब मुझे आपकी मदद चाहिए।
0: मदद मेरी? बोलो बिना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
1: भगवान के लिए आज के बाद आप मुझसे मिलने या मुझसे बात करने की कभी कोशिश न करें, और उसकी वजह मत पूछिए।
2: गोपाल साहब
0: जी,
2: बस उधर ही देखते रहोगे?
0: हाँ हाँ,
2: देखते रहो, खूब देखते रहो, लेकिन कुछ ख्याल हमारा भी रखना।

ब्यूटीफुल सॉन्ग छूने न दूंगी मैं आशा और लता जी दोनों बहनें ने मिलकर ये थी सुंदर बयान को आप श्रोताओं के सामने पेश की एड फिल्म जिंदगी शंकर जय किशन की सांच पर। एक आखिरी बयान आप सुनेंगे एड फिल्म जिंदगी एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी एक नए मेहमान विद कोर्स के साथ।

अहमद हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक सेफ नफेटा फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

और कुछ शायर और शायरी आप लोग को हम सुनाएंगे। दोस्तों प्यार भरी गीतों का महार प्रोग्राम, यहां से हम चलते हैं, कुछ शायर और शायरी हो जाए कि मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा हमारे यारो, कि कहते हैं कि एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, हर एक रिश्ता सी जमीन से तोड़ जाएंगे, हर एक रिश्ता इस जमीन से तोड़ जाएंगे, जितना जी चाहे सता लो यारो, एक दिन रुलाते हुए सबको हम छोड़ जाएंगे। ये हमारा पहला शेर है आज की।

और उड़े जब जब जुल्फे तेरी, और ओ जब जुल्फे उड़ते हैं तो कुमारियों का दिल क्यों मचलते हैं, आपको पता है तो जरूर बता देना कि क्यों मचलते हैं, कि कहते हैं कि जब आपका नाम जुबान पर आता है पता नहीं दिल को क्या मुस्कुराता है। जब आपके नाम जुबान पर आता है पता नहीं दिल क्यों मुस्कुराता है, है तसल्ली होती है मन को कोई तो है अपना जो हंसते हुए हर वक्त याद आता है। अक्सर हम अपनी रात यूं बर्बाद करती है, अक्सर हम अपनी रात क्यों बर्बाद करती है, बैठ के किसी कोने में उनको याद करती है, उनके वापिस आने की उम्मीद तो छोड़ दी कब की, फिर भी ना जाने क्यों हम अपना वक्त बर्बाद करती है। हम चलते हैं नाइटिंगेल, लता जी का एक सॉन्ग है जो एक हिट फिल्म था, फिल्म के नाम है बॉबी।

जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।

और अफसर कोई लड़की इस हाल में कोई जरूर कभी 16 बरिश के थे दोस्तों। फिल्म के नाम है बॉबी और ये यानी कि एक हिट सुपर हिट फिल्म थी ऋषि कपूर का दोस्तों और डिंपल का। हम कहते हैं कि किस्मत के लकीरों पर, किस्मत के लकीरों पर यकीन, किस्मत के लकीरों पर यकीन करना छोड़ दिया है जॉनी, किस्मत के लकीरों पर और यकीन कर दिया है जॉनी। जब इंसान बदल सकता है तो ये लकीरें क्यों नहीं, ये लकीरों क्यों नहीं दोस्तों। दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दिल हो प्यासा तो पानी से गुजारा नहीं होता। कोई देखे तो हमारी बेबसी, कोई देखे तो हमारी बेबसी, हम सभी के हो चाहते हैं पर कोई हमारा नहीं होता। हम सबको हो जाते हैं पर हमारा कोई नहीं होता है दोस्तों। कि कभी किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना, कभी किसी

किसी प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना, निभा सको तो चलना उसकी राह पर, वरना किसी के जिंदगी बर्बाद मत करना। फूल तुम्हें हम भेजाए हैं यहाँ रेडियो फाहुन के माध्यम से, और ये है मैथिली मुकेश और लता जी का ये सुपर हिट सॉन्ग।

और फूल भी और भेजा है खत में और फूल नहीं वो किसी का दिल है दोस्तों, यानी कि फूल के खुशबू में किसी के दिल भी चला जाता है कि कहते हैं अरे दोस्त मैं तेरी खुशियां बांटे शायद ना आ सकूं, अरे दोस्त मैं तेरी खुशियां बांटते शायद ना आ सकूं, हाँ ये वादा रहा जब गम आए तो खबर कर देना सारी की सारी, सारी की सारी ले जाऊंगा मैं, यानी कि तुम्हारा गम। तो दोस्त इसी को कहते हैं दोस्तों कि बहुत रोया है दिल, बहुत रोया है दिल उन्हें याद करके, बहुत रोया है दिल उन्हें याद करके, कुछ ना मिला रूप से भी फरियाद करके, वो कह गए मैं ना दूंगी साथ आपका, कोई पूछे उन्हें क्या मिला हमें बर्बाद करके। हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, वो है फिल्म के नाम है लव स्टोरी जिसमें, और वो है कुमार गौरव यंती इसमें काम किया है और ये भी एक बहुत सुपर हिट फिल्म थी दोस्तों। ये गीत हम आप लोग को जरूर सुनाएंगे।

और मैं भी आई आई आई लव स्टोरी फिल्म का नाम है 1981 का। और जितने लोग इस समय पे 18-19 बरिश के थे दोस्तों, तो फुल हाउस के साथ हमारा श्रीनाम का जो जितना फिल्म हाउस थे वो एकदम फुल थे दोस्तों। इस फिल्म भी हम भी कई बार जाकर देखे है लेकिन मन नहीं भरा। एक मोहब्बत भरी प्यार का ये फिल्म है और हम हसरत करते हैं जिनकी वो तो छुप गई कहीं। अगर तुम साथ दे तो नजर आ जाएंगी वो कहीं कि अपनी तमन्ना से कभी कुछ नहीं चाहा था हमने। अपनी तमन्ना से कभी कुछ नहीं चाहा था हमने। उसकी खुशी ढूंढते रहते तो बदनाम हो गई हम। बदल पे छलके है और नैतिक लता जी का ये एक सॉन्ग है दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए, जिसमें अनिल ऋषि मीनाक्षी काम किए हैं। और इस फिल्म का हम खोजते हैं ये कौन फिल्म का गीत है। अगर जो हमें मालूम हो गया दोस्तों तो आपको हम जरूर बता देंगे। लेकिन और इस फिल्म में काम किया है मीनाक्षी, काम किया है दोस्तों। और आओ मिलकर सुना जाए इस गीत को।

और बादल पे छलके आ, और इसमें अनिल कपूर, ऋषि मीनाक्षी सोनम, नैतिकी लता जी और श्रीस का ये गाया यानी कि फिल्म है और बदल पे छलके है, बदल पे छलके है जोंग का नाम है। और दोस्तों हम चलते हैं कुछ शायर और शेरी के ओर और कहते हैं कि पलकों की हिफाजत होती है, पलकों से आंखों की हिफाजत होती है, धड़कन दिल के अमानत होती है, हाय और हमारा रिश्ता भी बड़ा प्यारा है, कभी चाहत तो कभी शिकायत होती है। और कितने लोग हैं जो अलिंस्तांद है दोस्तों, जो अकेले रहते हैं, अकेलापन है, मेंस दी अलिंस है फॉर दी मेंस हैपिक ही नामलिक अनपार मोशाइस एंड खादरों कि ना साथ है किसी का ना सहारा है कोई, ना साथ है किसी का ना सहारा है कोई, ना हम है किसी के ना हमारा है कोई। कहते हैं चेहरे के हंसी से हर गम छुपाऊं, बहुत कुछ बोला पर कुछ ना बताऊं, कुछ ना रूठो कभी पर सबको मनाओ, खुद ना रूठो पर किसी को पर सबको मनाओ, ये राज है जिंदगी का बस जीते जाओ। और कभी कभी प्यार करते हैं तुम किसी से, लेकिन वो अमानत किसी और का है।

दोस्तों, तू प्यार है और किसी और का, और तुझसे चाहता है कोई और है, कि कहते हैं प्यार का बदला कभी चुका नहीं सकेंगे, प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, चाहकर भी आपको भुला ना सकेंगे, आप ही हो मेरे लबों की हंसी, आपसे बिछड़कर कभी मुस्कुरा ना सकेंगे। और जो लोग अकेले रहते हैं वो कहते हैं फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरी महफिल में चला आया हूँ, अंजाज वही है बस अल्फाज नया लाया हूँ, ऐ काश। दूर रहने वाले ठड़को एक बात, तुहके एक बात कहना चाहता हूं, अगर मेरा ख्याल आए तो अपना ख्याल जरूर रखना।

ये तो सही बात है दोस्तों, जैसा मेरा प्यार है वैसा हमारा गुस्सा वो भी है दोस्तों। आपको यहाँ गीत में बताए गए हैं कि कहते हैं किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो, किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो कि उसको जब भी प्यार मिले तो तुम याद आ जाओ। और कहते यार करते हैं तुम्हें तन्हाई में, याद करते हैं तुम्हें तन्हाई में, दिल डूबा है गमों की गहराई में, हमें मत ढूंढना दुनिया के बीच में, हम मिलेंगे तुम्हें तो तुम्हारी ही परछाई में। तो दोस्तों ये कुछ शायरी और शायरी आप लोग के लिए हम चलाए हैं।

क्या मांगूं, इस गीत को मांग किया है आएंगे। और ये जो गीत है हमारे यारो, आप लोग को हम कुछ एक दो शेरी बीच बीच में भी बोल देंगे। तो कहते हैं, मत सोच तू इतना यारो, मत सोच तू इतना कि जिंदगी के बारे में, मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दिया है यारो उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तो हम चलते, एक फिल्म के नाम है दरिंदा। दरिंदा एक बहुत हिट फिल्म थी। हम इस फिल्म के कोई ज़माने में सूरीनाम में हमने देखी थी, तो हम तो छोटे थे दोस्तों, लेकिन ये फिल्म देखती सीफ तक में रिलीज हुआ था हमारे सूरीनाम में, जहाँ तक मुझे याद है कि इस फिल्म को हमने मालूम नहीं कौन थिएटर में देखे थे, लेकिन उस वक्त हमारा जो उम्र थे बहुत बड़े नहीं थे। यंग रिटायर्ड का ये फिल्म है, तो आपको हम सुनाते हैं दरिंदा का, फिल्म दरिंदा का एक सॉन्ग।

और प्यार कर ले, और कर ले हमारी गोरी, और ये गोरा रंग जो आपकी है वो एक दिन उतर जाएगा। कि कहते हैं जब आपका नाम जुबान पर आता है, जब आपका नाम जुबान पर आता है, पता नहीं दिल क्यों मुस्कुराता है। है तसल्ली होता है मन को, कोई तो है अपना जो हंसते हुए हर वक्त याद आता है। तो है अपना ना दिल, तो अपना दिल जो है दोस्तों, तो वो तो आवारा होता है ना भाई। तो आप लोग को फिर कहते हैं कि दिल जब आवारा होता है तो उसको जोर से पकड़ना है। कि हेमंत कुमार आपको क्या कहते हैं, हेमंत कुमार आपको क्या कहते हैं, जब आपका दिल भटकता है तो आओ मिलकर जुना जाए।

है अपना दिल तो आवारा है और ना जाने तो किस पे वो आ गया है कि कहते हैं दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता। दिल हो प्यासा तो पानी से गुजरा नहीं होता, कोई देखे तो हमारी बेबसी हम सब के हो जाते हैं पर कोई हमारा नहीं होता। ऐ दोस्त मैं तेरी खुशियाँ बांटते शायद ना सकूं। हाँ ये वादा रहा जब गम आए तो कबर खबर कर देना, सारे के सारे ले आऊंगा। तो और हम चलते हैं प्यार से भी ज़्यादा तुझे हम चाहते हैं। आशा जी और मोहम्मद अजीज इस गीत को गाया है, आओ मिलकर सुना जाए हमारे यारो सुनने वालों। इस गीत को मूवी का नाम है इलाका फन 1989।

और प्यार से भी ज्यादा तुझे हम, और क्या करते हैं दोस्तों, प्यार करते हैं ना, कि मेरी आंखों भी मुझसे एक दिन ये एक ये कह देंगी कि ख्वाब उसके ना देखो करो।

0: रख देती हूँ मौत से पहले, मौत से पहले हमारे साथ ना छोड़ पाओगे। कि दोस्तों हम चलते हैं, मूवी का नाम है तीसरी मंदिर, जिसमें जिसमें शमी कपूर, आशा परेख, प्रेम चोपड़ा, हेलेन ने काम किया है और ये बहुत मशहूर फिल्म थी एक जमाने में। और ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों इस गीत को आपको सुनना चाहिए, मूवी के नाम है तीसरी मंजिल।
1: मुड़ मुड़ कर देख रही हैं
0: और हम भी देख रहे हैं।
2: पीछे आप हैं, खास बात नहीं।
1: यूं ही देखती रहीं आप तो यूं ही चलते रहेंगे हम पीछे पीछे।
2: यूं ही चलते रहे हम तो रास्ता कौन देखेगा?
1: रास्ता देखने वाला जो है पीछे पीछे।
2: और अगर ठोकर लग गई तो गिरेगा कौन?
1: गिरने की बात कैसी, थामने वाला भी तो है पीछे पीछे।
2: अच्छा अब आइए साथ साथ चलें।
1: जी नहीं, हमारी यही जगह है पीछे पीछे।
2: पीछे पीछे पीछे पीछे, दीवाने तो नहीं हो गए आप?

और दीवाना मुझसे मुझसा नहीं, और इस पीछे पीछे क्या होता है दोस्तों, पीछे पीछे और कुछ होता है। तो आपको हम बताते हैं कितने लोग बहुत बेवफा होता है, और जो बेवफा होता है उसके लिए आपको हम जरूर कुछ बताएंगे कि बेवफा लोग को

क्या करना चाहिए कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला अगर हो तो फासला क्या है, हौसला अगर हो तो फासला क्या है, वो तो ज़दा देके दूर जाकर बैठे हैं, अब किसी से पूछो कि मेरा खता क्या है। दोस्तों सब कुछ भुला दिया, ये मेरी वफा का कैसा सिला दिया, सब कुछ भुला दिया, ये मेरी वफा का कैसा सिला दिया, मौत हमें आते नहीं और जिंदगी हम ये पते नहीं।

अगर आपकी आंखें किसी को देखे तो उसको क्या पता है कि उसका हाल क्या होता है। हमारे यारों की कहते हैं, रोए तो बहुत तेरी बेवफाई की बात, रोए तो बहुत तेरी बेवफाई की बात, तेरे याद ना गई तेरी जाने की बात। तुम हमेशा खुश रहना, तुम हमेशा खुश रहना, बस मेरे साथ किया ये एक वादा निभाने। और हम चलते हैं मैं चली परमा श्री मोहम्मद रफी नाइटिंगेल लता मंगेशकर का ये लवली सॉन्ग आओ सुना जाए।

और मैं चली ना, और मैं चली। और ये गीत है परमाश्री मोहम्मद रफी का और लता जी का, नैतिकी लता जी का ये जोंग है हमारे यारो। और इसके बाद और आगे का प्रोग्राम हम आपको जरूर शायद, तो हम चलते हैं और आगे को हमारे यारो क्या कहते हैं कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है, किसी को चाहो तो सच्चा दिल से, क्योंकि जिंदगी फिर कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं यारो। तो हम चलते हैं गीत की ओर, और गीत है आपकी करीब हम रहते हैं, तो हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और कहते हैं दोस्तों, पलकों से आंखों की हिफाजत होती है, धड़कन दिल की अमानत होती है, है में हमारे रिश्ता भी बड़ा प्यारा है, कभी चाहत तो कभी शिकायत होती है, हमारे यारो। और ये प्यार भरी गीत हम आपके लिए, और इससे गीत जो है दोस्तों ये है ओ मेरे दिल की चैन, जिसमें रजेश खन्ना ने काम किया है, किशोर कुमार, एक रोमांटिक फॉल प्यार भरी गीत है जो हम आप लोग को चलाते हैं।

और दोस्तों ये प्यार भरी गीत जो है और ये मस्त भरी गीत है किशोर जी के, किशोर दादा जी इस गीत को गाए है। ये गीत जो है जो अब हम चलाने जाते हैं वो है काली काली काली काली यार लता जी का, नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है, लता जी के सॉन्ग है कि मैं चाहूं सपनों में भी साथ उसका हूं, इन हाथों में मेरी बस हाथ उसका हूं, चाहत मुझे इतना है उसे कि दिल मानता नहीं, कोई मेरे बात उसको बता देते। तो हम चलते हैं काली काली राती और काली काली राती याद सताते हैं, तो इस गीत आओ मिलकर सुना जाए।

और काली काली रतिया ये याद सताते हैं, काली काली रतिया याद सताते हैं हमारे यारो और यारो, तो ये बात है हमारी काली काली रतिया के बारे में। वो कहते हैं हमारे यारो, क्या कहते हैं कि प्यार का बदला कभी चुका ना सकेगे, चाह के भी आपको भुला न सकेंगे, चाह के भी आपको भुला न सकेंगे, आप ही हो मेरे लबों की हस्ती, आपसे बिछड़ जाने तो कभी मुस्कराना न सकेंगे। तो उलझन सुलझे ना की ओर हम चलते हैं।

यहां से पहला शेर हम आप लोग को और सुनाए हैं, और ये है फॉर ऑल द लवर्स, कहते हैं तहजीब में भी उसकी क्या खूब अदा थी, तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क कर। वाह रे दोस्तों, कि तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क करे। तो हम चलते हैं, देखे दिखने में भोले हैं, दिखने में बहुत भोले हैं, लेकिन चाल जो है वो अग्नि के समान है। तो ये बात है कि देखने में भोला है, और बॉम्बई का बांबू 96 का मूवी है, और क्लासिक सॉन्ग है, और बॉम्बई का बाबू की ओर हम चलते हैं।

और दिखा मैनी भोला है। और ये आशा भोसले का ये गाना है बम्बई का बाबू, और ये फिल्म का नाम है। तो जितने लोग दूर है तो दूर के मुसाफिर के लोग के लिए हम कुछ गीत और शेर आज हम आप लोग को सुनाए हैं कि कहते हैं फरियाद करके, फरियाद कर रही है ये तरस रही हुई है निगाहें, फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें। जो लोग दूर रहते हैं तो फरियाद तो बहुत करते हैं, तो कहते हैं फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें, और देखे हुए किसी को जबाना गुजर गया है, देखे हुए किसी को जमाना गुजर गया है। और जब किसी को देखे हुए जमाना गुजर गया है तो उसके लिए हम एक स्पेशल सॉन्ग चलाते हैं कि जब अगर दिल के अरमान जो है वो जब टूट जाते हैं तो आंसू बनकर आंखें में झलक जाती है।

0: और दिल के अरमां आंसू में, और वो रह गए और कहते हैं ये कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, हम दिल को हम कह कह के ये हम कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, हम कह कह के दिल को समझा रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं हमारे दोस्तों। इंतजार में लोग बहुत बहुत बहुत बहुत यादें करते रहते हैं हमारे यारों, ये सब बात होता है जब किसी के इंतजार करते हैं, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तन्हा सफर करते रहे, वो तो बीते वक्त उन्हें आने ना था, हम यूं ही सारी रात भर घबराते और बतलाते रहे। और जो कभी कभी लोग कमरे में रहते हैं तो कमरे की जब ताला कर देते और चाबी गुम हो जाते हैं, तो जब चाबी गुम हो जाते हैं तो लोग तुरंत क्या सोचते हैं, हम आपको बताते हैं।
1: अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो,
0: सोचो कभी ऐसा हो तो भला क्या होगा,
1: कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम
0: तो जब चाला चाभी लाश हो जाते तो लोग कांपते लगते हैं।

0: कौन?
1: और हम तुम जब अपने कमरे में बंद होगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अभी आप लोग हमें जरूर बताना कि क्या सुन सकते हैं दोस्तों। नॉर्मल्स हम सब एथर पे भी सुनाई देते हैं, यानी अपनी गाड़ी में सुनाई देते हैं, ऑटो में जब बैठेगी नीदरलैंड के बातचीत होते हैं ना सूरीनाम या अन्य देशों में, तो यहाँ अपने ऑटो में सुनाई देते 15.7 AM फ्रिक्वेंसी पे आप लोग 24 घंटा हमारा प्रोग्राम को श्रवण कर सकते हैं। और हम सुनते हैं और देहाबी प्रेस रेडियो पर पूरा हॉलैंड देश में सुनाई देते हैं। नहीं आप लोग www.fahun.nl हमारा यानी कि इंटरनेट पे पूरा विश्व में पूरा दुनिया में हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। हमारे यारो तो हम भी चलते हैं और एक शायर की ओर। और शायरी अब क्या है, उल्फत के मारू से ना पूछो अलार्म इंतजार का, उल्फत के मारो से ना पूछो अलार्म इंतजार का। और 85 है जिंदगी और ख्याल है बहार का, 50 से है जिंदगी और ख्याल है बहार का। हमारे यारो एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा।

दनानी पद्मा श्री मन्ना दी और नैतिक लता जी मंगेशकर का ये लवली सॉन्ग आओ हम सब सुना जाए।

और आ जा सनम मधुर चांदनी में हम, और जब तुम मिलेंगे तो बहारों में फूल बरसेगा। और उसके बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, आई जिंदगी तेरी भी मुझे जरूरत नहीं रही, बुझ गई अब उसके इंतजार के वो।

दिए, कहीं आस पास भी उसकी आहत ना रही। जो किसी के दिल किसी से टूट जाते हैं हमारे यारो, तो ये सब बात निकल आते हैं। तो कोशिश करना कि अपना मोहब्बत जो है, अपनी मोहब्बत के मजबूत पकड़ के रखना, जबरदस्त पकड़ के रखना, और इतना जबरदस्त पकड़ के रखना कि उसमें दरार ना आवे। ये है कि मुझको अब तुझसे अगर जब अपने प्यार को अपने दिल को मजबूत जबरदस्त नहीं पकड़ के रखेंगे, तो ये सब शायरी आपके लिए है कि मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, ऐ जिंदगी तेरे भी मुझे जरूरत नहीं रही, बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आदत ना रही, तो उसको भूल जाना बहुत मुश्किल की बात है। और मैं थी मुकेश, नहीं थी गिल, लता मंगेशकर या जों आपको बताएंगी कि किसी को भूल जाना कितनी दुख देता है। इस फिल्म में यानी कि जीन तमन मनोज कुमार ने काम किए हैं और मूवी का नाम है रोटी कपड़ा और मकान की ओर हम चलते हैं।

और मैना भी आपको, मैं भी आपको कभी नहीं भूलूंगा। जब आप हमें भूले नहीं देगी तो भला जोनी आपको कैसे भूलेगा। हमारी यारों की यारों की कहते हैं मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, अभी हमने कह दिए थे लेकिन अब कहते हैं कि ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, किसी की जान गई आपकी अदा तेरी। जी दोस्तों कि कब आ रहे है हो, कब आ रहे हो मुलाकात के लिए, हमने चांद रुका है, हमने चांद रोका है एक एक हमने चांद रोका है एक रात के लिए, इसलिए कि पहला पहला प्यार में क्या होता है।

हम दोनों दो प्रेमी और दुनिया छोड़ चले रोमांटिक सॉन्ग है, राजेश खन्ना का फिल्म है, दादा किशोर कुमार जी और नाइटिंगेल लता जी का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है हमारे यारो। और ये गीत है, फिल्म के नाम है ताज नेगेटिव सेशन फाइव तक के, दादा हेमंत कुमार और दादा हेमंत कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

और गोरी बुलाए तेरा सावरिया, मनाए तेरा सावरिया, और ये बात है मान भी जा। तो ये फिल्म के नाम है बेताम, सोनी देओल अमृता सिंह का और नैति के लता जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए फनत यार नीखती होंड तेंद्री इन तख्त का ये गीत है।

और जब हम जमा होगे जाने कहाँ होगे। और हम और आगे को चलते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं भैया कांति कुमार के ओर जोकर, तो आओ मिलकर सुना जाए।

और जाने कहां गए वो दिन। फिल्म के नाम है मेरा नाम जोकर, निकलने वालों से पता का ये फिल्म है दोस्तों। माइटी मुकेश का ये लवली प्यार भरी सॉन्ग है और आप लोग जानते हैं हमारे यारो पुराने गीत की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमाश्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।